0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में। जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: ताली ताक धुमी ताक ताली ताक धुमी ताक धाला आंगू ताक धुमी ताक ताली के नंद ताक नाक ताक धुमी ताक नाक नाक धुमी ताक नाक नाक धुमी ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुतारी ता कुतारी के नंद ताली जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुतारी ता कुतारी के नंद जम तारी जग तारी ताक नाक नाक
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

काटूंगा वही इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर कामकाज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। ये बेंद आप खुश हैं तो पूजाला रेडियो, जहां भी हो आप बच्चों का तू बेंद खनीत लेकर फाइन दाग एंड खनीत लेकर सामा मेट याओ फेवरेट रेडियो उजाला रेडियो, यहां एकदम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट फ्रॉम आउट स्टूडियो देन हाग। यहां से हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं अमी जयराम एंड इट इज सेलेक्टा बीट्स टू फेमस। Laten we daar eventjes lekker op bouncen. Lekker van genieten.

मेरे दुआ सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है कहाँ। गीत का नाम है ख्वाबों में, geweldig mooi gezongen uit de film Ki en Ka. सुनवालो ये है आपका उजाला रेडियो और अगला गीत जो हम पेश करने जा रहे हैं आपके रेडियो पे वो है जेनिफर भागवंदीन की आवाज में सामने में सेलेक्ट बीट आप जैसा कोई geweldig geweldig prachtig mooi gecoverd Jennifer Bhagwan Singh, sorry Jennifer Bhagwan Singh.

मैं हूँ हीरो तेरा, सेलेक्ट बीच सामने में चला बेला आउट फिल्म हीरो कम तो तोर्शी नेलम एंड दैट वाज गेसोंग डोर सलमान खान एंड या सलमान खान ऑफ सेलेक्ट बीच. Jij mag zelf bepalen wie mooier zingt hoor. En dit is de film Bagui. Weer een geweldige mooie song. Gezongen door Arman Malik en Shraddha Kapoor. Music composed by Amal Malik. Geweldige mooie song. Giet kanaam heer.

ओम जय लक्ष्मी माता, और इस तरह से सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों।

हमारे प्यारे सुनने वालों, आज शुक्रवार का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाले हैं। और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते, एक सुंदर सा गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

जिसके सपने मुझे रोज आते रहे, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड लता एंड महेंद्र कपूर जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देखा जाए मोहम्मद रफी एंड लता जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आज आप लोग सुनेंगे। तो ये गाना आप सभी सुनने वालों के लिए हम आप सभी को सुनाते हैं और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। जबल गुड मॉर्निंग यार, खुद मोर खलमाओ। अगर आप चाय कॉफी या तो चाहे जो चीज आप पीते होंगे खेम्बर ते भी बना के पी सके हैं। बैंक जो है ना तो बैठ और बैठ स्मैकल एक चीज स्मैकल कलमाओ

बेखुदी ने सनम आई तरह से लता एंड मोहम्मद रफी जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं एक और ऐसे ही गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुने बोलो। और अब की बार गाना को गाने वाले होंगे किशोर कुमार जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। उजाला रेडियो है और बैना बैना बैना वीकेंड यार आप सभी को ये वीकेंड बधाइयां शुभकामना। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे ओ मेरे दिल की चैन यावेल आई बॉय

के चैन दिल फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी आर डे बर्मन के साथ और संगीत पर किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत और यू आर उजाला रेडियो यार। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग को हम सुनाने वाले हैं और इस गाना को गाने वाले होंगे लता एंड मुकेश जी के आवाज में जबल मैं ना भूलूंगा यार।

आई बो ये किसी राह में किसी मोड़ पर हमें छोड़कर चलने चल ना देना, लता एंड मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो। वाह दिलवा पागल है यार।

जो भी यहाँ प्यार करे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी खास करके कुमार सानू जी के आवाज में, अनीश बैर, लता अना, आशा जी एंड मुकेश जी, लेमन में पवन भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, खुद मोर खैर।

0: हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है, 10 बजने वाले हैं। इट्स बे ना 3 यूर ना द ब्रेक ना द रिक्लाम बने के तरफ यार, एंड यू आर उजाला रेडियो है वीकेंड का प्रोग्राम। और तो लोग सोच भले का पकाओ कोई का खाओ कोई आज बात खाओ फंदा कोकन यार।
1: लस लस में है बिजली कहीं चल ना जानो
0: ना द ब्रेक ना द रिक्लाम बने के तरफ यार। आई या आई बॉय

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम वीकेंड और वीकेंड में तो लोग क्या करिए जो भी आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कर लेना वरना ना करिए यार हम तो से बोले लो दिलवा चाहे जितना पागल है अपना दिल के बात कभी ना सुनिए जो तो दिल आई वो ही तू करिए यार और चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो ये गाना पेश है संद्रा के लिए प्यार के साथ और आप लोग सुनेंगे उदित नारायण

सफर ओ हम सफर ओ मेरे दिल की नगर, चलो सपने हम सजाएंगे। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो है यार। आई बोई वीकेंड तो है तो चलन दे यार।

रे रे बप्पा बप्पा तू भैल बेहाल एंड सिल्वा के माई गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने यार एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और अब की बार गाना जो आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में हम आप सभी को सुनाने वाले हैं यार। सुनिए इस तरह से

आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है यार। कितना मोई बोली से चिजवा, आंखों से उतर कर तू मेरी दिल के धड़कन में है। जबल कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए प्रोग्राम को भी खास करके पेदरो खेदू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने काम पर बा और भाई वाह उजाला रेडियो सुने तो भैया पेदरो ये गाना तुम्हारे नाम

शहर है नई चाल है एंड इस गाने को गाने वाले हैं खासुर के विजय रामबरन की आवाज में। गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और देखा जाए एकदम बेल्जियम में खासुर के मीला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मुर्ख एंड यू आर उजाला रेडियो। दो मिनट बाकी है 10:30 में 12:04 है यार Jabal, here we go, as you are, Ujala Radio.

कितना विशाल कितना मोई नीले दगन के तले एंड यू आर उजाला रेडियो है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम आप लोग से बता चुके हैं कि भाई ना वीकेंड थे ना त्यूलक वीकेंड, तो हम लोग का पकाओ कोई का खाओ कोई ना त्यूलक, सब कोई बैठ करके सोचे कि वत खाओ यही थे फंदाक बैना वीकेंड यार। और चलिए देखा जाए प्रोग्राम को भी, तिल बेरो शहर में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मोरख।

भाई बोई एक दिन तेरी राहों में हो जाऊंगा, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। खुद मोरखलमाओ, गुड मॉर्निंग यार। मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने और अपने सुनू शक्लिए गाना को मांग के हैं।

मेरा इश्क सुफियाना यार तेरे वास्ते ये आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हमारे प्यारे सुनने वालों एक गाना हम पेश करने वाले हैं खास करके हमारे प्यारे लीफ फ्लोरा मौसी के लिए। उनकर जीव शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ सभी परिवारों की ओर से और ये गाना के साथ उनकर जीव शांति प्रार्थना के लिए।

दुख दूर कर हमारा, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, खास करके हमारे फ्लोरा माउ से उनकर जीव शांति के लिए प्रार्थना सभी परिवार के ओर से। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों, करीबन 10 मिनट बाकी रहा 11 बजे में, या वेल 3 मिनट फॉर लव। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और इस गाना को मांग करने वाले हैं खास करके देखा जाए फैंस फोल्डर में एमी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, दिन में 12 बजे तक हम आप लोग के साथ देने वाले हैं, और वीकेंड का प्रोग्राम वीकेंड में जो भी आप लोग करेंगे बस यार यही सोच लेना, प्यार से एंड दुलार से कर लेना, वरना ना करिए, नहीं तो पछताए के परियार।

जिंदगी मुझे तू बता। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने वालो। करीबन 10 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, और उस पाइये में देखा जाए रॉय भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो भाई रॉय खुद मोर्ख थैंक यू यार। और ये गाना तुम्हारे नाम, यबो आई बोल।

0: मोहब्बत।
1: आय बॉय कहाँ लिख छुपाइये यार, सबको बताऊंगा अपना दिल तेरा एन आशिक है यार
0: मेरा प्यार।
1: आय बॉय कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और राकेश दनहाख भाई यावेल राकेश पठाई से रसेप आज का यावेल बोले डोक्सा बनाएगा वीकेंड पे वहां लेकर डोक्सा डोक्सा मसाला में खूब तीता तीता एन एन आलू के रोटी। आई बॉय अश्विति यारा लेकर चाहे जो चीज आप लोग बनाइए यार, प्यार से बनाइए, दुलार से बनाइए एंड प्यार से बैठ के खाइए। एंड यू आर उजाला रेडियो के साथ, चाहे जहां पर जाइए यार हमें साथ लेके जाइए, लेकिन हम तो लोग से बोले कहूं ना जा, घर पर बैठ और हमारे साथ देते रहना दिन में 12 बजे तक। चाय या तो कॉफी बना ले या तो कुछ बना ले यार अपने खाओ, ब्रेड या तो यार ब्रेड पिंडा काशी बना ले यार, एक को प्रॉब्लम ना है। एन सत्य भी प्रोग्राम को बड़ी कृषि ने गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार, नाद ब्रेक नाद रिक्लाम में बेनिक मित्रों यार, कल लास्ट घंटों जैसे प्लेन उड़ेगा देखिए।

यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। रिक्लाम दोन और करीबन पांच मिनट व्यतीत हो चुके 11:05 हम तो लोग से बोली तो लास्ट घंटो आज इसे प्लेन उड़ी एंड देखा जाए सुतमेर में इस वक्त भाई हैंग बहोरन जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने ना सुने है कहूँ घूमे है हमने नहीं कहा घूमे मैं कहूँ घूमत हो चाहे जहां घूमे भाई हैंक बहोरन भाई जी। तो चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ यार सुनिए गनवा दिल लगाई की सुनिए नहीं तो ना सुनिए आई बॉय

0: एंड भाई हैंग बहुरन ने मोई से अपन काम करिए यार एंड एगो मोई वीकेंड हम आपके बोले लो फैन वीकेंड तू खवें हमारे तरफ से जो भी वीकेंड हम करिए प्यार से करिए वरना ना करिए यार हम तो से बोले लो भाई हैंग
1: धरती का प्यार
0: और देखा जाए राजेश बनार से भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं ना बैठ करके सुने काम करे भाई वहाँ भाई सानो वैरक से भाई राजेश बनार से

0: आई बोई नीले दगन के तले और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे और केस एकदम स्विट्जरलैंड से एगो हमें पठाई से एगो ऐप बोले वो बनाएगा स्वार्थ बुर दोक्ष यार आई बोई कितना विशाल कितना मोई वीकेंड वक्त एगो स्वार्थ बुर दोक्ष बनाएगा स्विट्जरलैंड में। चलिए केस ये गाना तुम्हारे नाम आई बोई चलन देना
1: सजनिया बहिया में बहिया डाल सजनिया बहिया में बहिया
0: एस यू आर उजाला रेडियो।

Well, शाबाश शाबाश बोले सजनिया बहिया में बहिया डाओ एंड यू आर उजाला रेडियो वेल करीबन 20 मिनट वैसी हो चुके हैं 11 बजकर हम दोनों से बोली टोर टेमुआ उड़े ही यार वेल टेमुआ के कोई ना पकड़ पाई सब कुछ पकड़ लिए मैं को तेज के कभी ना पकड़ पाई है

बोले खत में लिख दो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, बोले फूल भेजा है तुम्हें खत में, एंड फौसिया दीमन शहर में प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मोर्ख फौसिया एंड नो फन हर्त या वेल आई बोई।

वादा कर ले साजना, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वाले थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ एंड रॉबर्ट दनहाशर में प्रोग्राम को बैठ करके सुने भाई रॉबर्ट, ये गाना तुम्हारे नाम यार जबाओ फैन वीकेंड तू खवेंस यार।

मेरे दिल में आज कहीं है बोई इतना मोई कितना बिसाओ। और गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, हमारे प्यारे सुने वालों, हम तो लोग से बता ही चुकली और हम तो लोग से फिर से बता दी कि टेमुआ जहां मांगती तो रोक लेती, मत टेमुआ ना रोक बाबे काहे खर्चिन। 20 मिनट बाकी रहा 12 बजे में और 12 बजे तक हमारा साथ और आपका साथ। जवेल एन तिच्छा भी प्रोग्राम को बैठ के सुने और मेरे शहर में खुद मुर्ख है, टेमुआ मांगती तो हम रोक लेती यार, मोतना शक्ति हमें ना है। And you are Ujala Radio.

0: गैले काम से वेल एस यू आर उजाला रेडियो और हमारे प्यारे सुनो लो वीकेंड है वीकेंड है वीकेंड है वीकेंड तो मैं जोन करिए यार प्यार से करिए
1: जी इतना सुंदर साजन काहे के जइयो।

के जयो विदेश इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुने वालों, करीबन 7 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। हम तो लोग से बोलत बोलत थक गई थी, बाकी जो भी करिए प्यार से करिए, नहीं तो ना करिए। कोई से तू प्यार करे तो दिल खोल के बोल दे यार कि हमें तुमसे प्यार है, हम तो से

0: मेरी बिना जीना। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे हम आप लोग से इजाजत चाहेंगे। हम आप लोग से इतना माइल बोले कि जितना तुम लोग हमें एपट है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यार।
1: अमेरिका से लेकर दुनिया भर के लिए मीठा इंडो कैरिबियन छुटने म्यूजिक आजा रानी
0: आजा ना।
1: आज रात हम दोनों नाचेंगे।
0: आई बोई वेल अपना शुक्रवार का शाम तो लोग मोई से बिताइयो, रात मोई से बिताइयो, जो ची तो लोग बनाइयो, खाइयो पियो, मोई से रहिए। हमारे तरफ से आप सभी सुनने वाले कोई को मोई वीकेंड, आलम आलम फैन वीकेंड। तू खबर हमारे तरफ से जवेल, हम जाए लो बोई, हम तो लोग से बताए रही इतना।

हमारे प्यारे सुनने वालों, हम आपके सब इजाजत चाहेंगे। हम इतना भी माइल बोले कि आप लोग जो हमारे साथ दिए, हमारा प्रोग्राम आप लोग सुने, आप लोग को जरूर से पसंद आए हुए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग मौज से रहिए, अपने आप के जरूर से ख्याल कीजिए, और हमारा रनिया तू जल्दी से आ जाना, शुक्रवार का दिन।

से बैठक गाना हंगामा आने वाले सोमवार को आप लोग मौज से रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष सिंह गोविंद। आई बॉय, बाय बाय, स्वाई स्वाई।

और नतुलक रेक्लामा के उस पार, ब्रेक के उस पार, चाय कॉफी लॉयड के साथ डबल वीकेंड है तो चाय कॉफी मिस्टर लॉयड के साथ।

उजाला रेडियो यहीं सुनने वालों और यहां तक आपने सुने हैं कॉफी चाय मेरा शो हमने पेश किए हैं आपके वास्ते या सत्यम माता दीन के साथ हम ये प्रोग्राम अब समाप्त करने वाले हैं. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Moois rijden. Let goed op jezelf.

बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश अब उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.

उजाला रेडियो यहीं सुनने वालों और यहां तक आपने सुने हैं कॉफी चाय मेरा शो हमने पेश किया है आपके वास्ते सत्यम माता दीन के साथ हम ये प्रोग्राम अब समाप्त करने वाले हैं. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Mooi rijden. Let goed op jezelf.

बहरो थाम लो अब दिल, मुकेश जी के साथ लता जी से गीत को आप सुने और फिल्म का नाम नमस्ते जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम, अब हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी।

शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, इसलिए आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म राम और श्याम से आप सुने आज का उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

और देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे बिना। लता जी के साथ आप सुने उदित नारायण को, फिल्म फर्ज का गीत, और ये उजाला रेडियो है।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों की वेबसाइट आप देखें ujala.nl। नेम ऑन्स ओवरऑल में और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है सुन वालो। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

2 अक्टूबर का प्रोग्राम जारी किया जा रहा है एंड 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने सुने हैं हैप्पी प्रोग्राम खोज फॉर सुभाष. व्हाट एन एनर्जी, व्हाट एन एंथुसियाज्म फॉर सुभाष. टाइटन साइन प्रोग्राम 3 घंटा लगातार आपको सेवा किए हैं.

उजाला रेडियो यहीं सुनने वालों और यहां तक आपने सुने हैं कॉफी चाय मेरा शो हमने पेश किया है आपके वास्ते सत्यम माता दीन के साथ हम ये प्रोग्राम अब समाप्त करने वाले हैं. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Mooi rijden. Let goed op jezelf.

0: Ujala Radio gaat helemaal los.
1: भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरालो महफिलें सजालो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए।